सानी सानी ए झिल्के नानी कति राम्रो पाल छोरी छ, जीवन मेरो भागो छैन।